एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला पहला। दुख दारू सुख रोग भया जा सुख ताम न हुई, तू करता करना मैं नाही जा हों करी न हुई।

गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़न रखीश्वर जुग जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुर्ग मच पयाले गावन तुदनो रतन पाए तेरे अठसठ तीरथ नाले गावन तुदनो जोध महाबल सूरा गावन तुदनो खानी चारे गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे से तुदनो गावन जो तुद पावन

चौथा हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनो करो गुर पास हम कीरे किरम सतगुर शरणा।

जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत, जित हर रस पाया, मिल जा

शैल पत्थर मह जंतु उपाए ताका रिजक आगे कर धरिया मेरे माधो जी सत संगत मिले सुतरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाउ जनन पिता लोक सुत बनिता कोई न

ओंकार सत गुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्याव है सब त्याव है तुद जी।

जन नानक तिन कुर्बाना। हर त्यावह हर त्यावह तुद जी, से जन जुग मह सुखवासी। से मुक्त पहे जिन हर त्याया जी, तिन तूटी जम की फासी। जिन निरभाओ जिन हर निरभाओ ते आया जी, तिन का पाओ सब गवासी। जिन सेवया

तू सबनी ध्याया, जिसनु कृपा करहे तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मनमुख गवाया, तुद आप विछोड़या आप मिलाया।

राव अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम काबू, आप हाथ दे मुहे बचाबू। सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै करत।

कियो, जवन काल सब लोक सुवारा। नमस्कार है ताहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो, आदंते कै अवतारा। सोई गुरु समझे हो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सुवारी, सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद कियो, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला।

मिलत देह धर सब हूं, जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै, आप अपनी बूझ उचारै, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम।

बरन तो पिन पिन तुहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही भूपा अंडज जेरज से तज कीनी उत्पुज खान बाहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हवै बैठा कहूं सिमट भयो संकरे कैठा सिगरे श्रेष्ठ दिखाए अचम पव आद जुगाद स्वरूप स्वयं पव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तुझ तव सरनी परे तिनके दुष्ट दुख तहवै मरे पुरख

दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो, ताके ताप तनक मह हरि हो, रिद्ध सिद्ध कर्मो सब हुई, दुष्ट छाह छव सकै न कोई।

मनै माहि, जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। तिस साहिब की टेक नानक मनै माहि, जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहि। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

मैं सुख कने कोई न जाने तुम्हारा अंत ऊंचे ते ऊंचा भगवान सगल समागिरी तुम्हारा सूतर तारी तुम ते हो ऐसो आगे का।

सत्संग जी बोलो जी वाहेगुरु। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वाह श्री भगवती पाचे दसवीं प्रथम भगवती समर कहे गुरु नानक लई त्याय वरंकत कुरते अमरदास रामदास से हो सहाय अर्जुन हरगोबिंद सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नवन दयावता है सब साई हुए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साहब साई हुए सहाय दसा पाची ने पुत्रात्मक स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब के पाठ दरदा तेन तरके खालसा से बोलो जी वाहे गुरु। गरीब नवाज आप जी के पांच प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्त हटियां जपियां तपियां जिन्हें नाम जपया वंड चख्या देख चलाई ते वाही देख नेड़ कीता तेना प्यारे सत्यारे ने कमाई दते अंदर के बोलो जी वाहे गुरु। जिन्ना सिंघा सिंघणियां धर्म हे सी दिते बंद बन कटवाए खोपरियां लवाइयां चरखियां ते चढ़े आड़े ना चराए गए गुरुद्वारे सेवा वास्ते कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं आ रहा सी किसे ते कैसा सत्संग संग निभाया तिना ही कमाई दा अंदर के बोलो जी वाहे गुरु। पंजा तख्त गुरुद्वारे दा अंदर के बोलो जी वाहे गुरु। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे नाम चेता आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां गुरु खालसा साहब तहां रचिया रियायत देख ते की फतेह बिरद की पहज पंथ की जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोलबाले बोलो जी वाहे गुरु। सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान साह दान भरोसा दान दाना सिरदान नामदान श्री अमृतसर साहब के दर्शन स्नान क्योंकि चंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु। सिखा दा मन नीवा मत उचे मत पत के राखे आप वाहे गुरु। गुरु गरीब नवाज पंथ सदा सहाय दताज जी गुरुद्वारा ननकाणा साहब पंजा साहब होर गुरुद्वारे गुरु धाम जिन्हों तो आपके पंथ छोड़िया गया है उन्होंने खुले दर्शन की दात से सेवा संभाल दता अपने खालसा जी ने बख्शो ये न्योटिया की ओट गुरु न्यासरिया ने आसरे गुरु धन धन गुरु ग्रंथ उतार दुआए कर जोड़ करो अरदास तुद भावे ताने रास। हे गरीब नवाज जी आपके चरण कामना अरदास भी आपने बख्शी की है अद्धे रपित गुरबाणी सुखनी साहब संपूर्ण पाठ उतार ऐसे वे संध्या समा जान के आपके चरण सोधदार रहरा साहब ने पाठ की देन कृपा करो होइया भुला चुकों की माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोध के सचखंड प्रवान करो बाणी का भाव सारिया संगतां दी हिरदे इंसानिक वार्ता करो जी अगो तो शोध ते मित्र बाणी ध्यान मन बुद्धि बख्शिश करो। गरीब नवाज इस खुशी में आप जी दख्शियां दातों में पुत्र देखा तैयार कर खा दिता आप जी भोग लाओ शीर प्रसाद साह संगत की रसना लाए।

आराधना पूर्ण करो जी। तांतार तार बता दियो आदि चाने कहना तेरे दास ने तार बता जी आदि तार के सेवा दार का अनुभव गया ग्रेजुएट होने की खुशी हो जी। परिवार धन्यवाद कर दें बेहद तुम्हारे घर तार प्रमाण करो बख्शे करो मेहर कर दें। काका मनरूप सिंह गेल नु तंदुरुस्ती बख्शो बच्चे नु लंबी आयु बख्शो माता पिता धर्मदेश को मदा गया कर बख्शा देता बच्चे ने गुरसिखी दाज बख्शा करके होर उची विद्या दाज बख्शो चाटी कला बख्शी करो परिवार सुख रखो कमाइया सवर करो जी। इवन वाज आधार कर से आधार बीबी मंजू दे जन्मदिन की खुशी हुई परिवार वालों आप चरना रास बेनते कृपा देता है मेहर करो बीबी मंजू नु तंदुरुस्ती बख्शो लंबी आयु बख्शो कुछ के नाम दाज बख्शे करके सदा चाटी कला बख्शी कृपालता करो जी। गुरु की विनवाज आमदार के सेवादार काका गुरताज सिंह ढींसा के जन्मदिन की खुशी हुई परिवार मेहर तुम्हारा के हाजरों के तार प्रवान करो बख्शे कर कृपा करो तैयार दियो मेहर कर दें। काका गुरताज सिंह तंदुरुस्ती बख्शो बच्चे लंबी आयु बख्शो माता पिता धर्मदेश कौन का आग्ञा कर बख्शे दार बच्चे ने गुरसिखी दाल बख्शी कर करो बच्ची दाल बख्शो चाली कला बख्शो तरक्की आवता जिंदगी बख्श करने की बात करो। गुरु जी विवाह मेहर करो दूर दराज कर बैठी लाइव कथा की शर्म कर रही सारी संगत हाजिर प्रवान करो घड़ियां लिखे लाओ सतारा ने बख्शी संगत ने बख्शे संगत आपके चरणा धन्यवाद करने शुक्रिया अदा करते हैं बेहद ऑनलाइन गुरु घर सेवा संगत हर संगत माया पेटा का चरणा प्रवान करो बख्श कर सब कमाइया सफर करो कार्य वार सब संगत दुभकामना पूरी करो जी सतार मेहर करो सेवा प्रवान करो पूरा चुका माही बख्शो मित्र गुना में बख्शे ग्रंथ अज के शाम की कथा की बार हमता से आगे बख्शो रेंदे कार सवार के चरणा तुना बनाओ शोध से पुत्र सेवा लाने की बात सही प्यारे मेरे जी ने अपना नाम दिता है नानक नाम चढ़ी कला तेरे पाने वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोहरा अग्या भाई अकाल के तभी चलायो सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा के दे जो प्रभ को मिल बोझ है कोज शब्द महले राज करेगा खालसा आगी रहे ना को क्वार हो ऐसा मिलेंगे बजे शरण जो वाहेगुरु नाम जहाज है चढ़े सो तेरे पा जो शरदा कर सेवंदे गुरु पारे उतारन खंडा।

दया करो किछु मेहरु पावहु, डुबते पत्थर तारे। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ, जैत सरी महला पंजवा, कार तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कोई जाने कवन इहा जगमीत,

समय की समाप्ति है। महाराज मेहर करन, कृपा करन, तरस करन, सेवा दे नाल सिमरन, जे सेवा है ते नाल महाराज सिमरन भी बख्शिश करन, जे सिमरन है ते नाल सेवा बख्शिश करन। सेवा ते सिमरन दोवें ऐसे खंभ ने जिन्हां दी उडारी जीवन महान बना देंदी है। जीवन दी जाच पता लगदा है, प्राणी तू आया लहा लैण, लगा कित को फकड़े सब मुकदी चली रहे। सबना दी हाजरी महाराज प्रवान करन। आओ बड़े प्यार नाल सन्मान योग ज्ञानी नवनीत सिंह जी आप जी दे सन्मुख होणगे, गुरमत विचारां लैके असीस देव फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु।

अपनी भक्ति लाई। ए विद सुन के जाटरो उठ भक्ति लग। मालक जी सब को तेरे वश, अगम अगोचरा तू, भगता के वश भगता तान तेरा। केवल ते केवल की मंगदे हन, ए विद सुन के जाटरो उठ भक्ति लग। पता लग्या है इन्हें भगत कबीर जी, सैन जी, रविदास जी, इन्हां नूं प्राप्ति हो गई। फिर तैनूं क्यों नहीं प्राप्ति होनी? ताहे तां उहदे नाल जुड़ गए ने। इह विध सुण के जाटरो की मंगदे ने, कर कृपा अपनी भगती लाए।

कोई जन हर्ष्यों देवे जोर चरण गहो बको शुभ रसना दीजे प्राण अकोर रहाओ मन तन निर्मल करत के आरो हर सिंचे सुधा संजो या रस में मगन हो।

चितवो तुमरी ओर अप है पद दान सिमरन स्वामी को प्रभु नानक बंधन छोर।

बाल रंग कान रंग काल अन काल अन भूतांग आभा अपांगत मित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निरपय निकाम अद्भुत प्रचंड मित गत अखंड अलिश्य कर्म अदृश्य धर्म सर्व प्रणाढ्य अंडन वाढ्य चाचरी चंत्व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं।

हैं, बंद हैं, अपगत हैं, विरक्त हैं, अनाश हैं, प्रकाश हैं, निचिंत हैं, सुनित हैं, अलिख हैं, अधिक हैं, अलीख हैं, अपेख हैं, अटाह हैं, अगाह हैं, असंभ हैं, अगम हैं, अनिल हैं, अनाद हैं, अनित्य हैं, सुनित हैं, अजात हैं, आजाद हैं, चरपड़ चंत्व प्रसाद, सर्वंग हंता, सर्वंग गंता, सर्वंग ख्याता, सर्वंग ज्ञाता, सर्वंग हर्ता, सर्वंग कर्ता, सर्वंग प्राणं, सर्वंग त्राणं, सर्वंग कर्मं, सर्वंग धर्मं, सर्वंग युक्ता, सर्वंग मुक्ता, सावल छंत्व प्रसाद। नमो नर्कनासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं बेपूते परमात्मं प्रमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विपूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात न साकं शरीक है अमितो अमीक है सदैवं प्रभाह अजाह अजाह भगवती चंत्व प्रसाद। कि जाहर जहूर है कि हाजिर हजूर है हमेशल सलाम है समस्तुल कलाम है कि साहिब दिमाग है कि हुसनल चिराग है कि कामल करीम है कि राजक रहीम है कि रुजी देहंद है कि राजक रहिंद है करीमुल कमाल है कि हुसनल जमाल है गनीमुल किराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल सिकान है हिरासुल फिकान है कलंकंग प्रनाश है समस्तुल निवास है गंजुल गनीम है रजायक रहीम है समस्तुल जुबा है कि साहिब किरा है कि नरकंग प्रणास है बहस्तुल निवास है कि सर्वल गवन है हमेशुल रवान है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परम परमीश है समस्तुल अधीश है आदेशुल अलेख है हमेशुल अपेक है जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है कि जरूरत जमाल है कि चलंग प्रकाश है कि मित्तो सुभाष है कि अजब स्वरूप है कि मितो विभूत है कि मितो पसा है कि आत्म प्रभा है कि अचलंग अनांग है कि मितो अपांग।

राम गुनगन मुदाम अरवर अगंज हर नर परपंज अनगन प्रणाम मुनमन सलाम हर नर अखंड वर नर अमंड अनपवनास मुनमन प्रकाश गुनगन प्रणाम जल थल मुदाम अंचिज अंग आसन अपांग उपमा पार गत मितुदार जल थल अमंड तिस्विश अपांड जल थल महंत तिस्विश बेअंत अनपव अनास त्रितर तुरास आजान बाहु इक्कै सुदाहु ओंकाराद कथनीय नाद कलखंड के आल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अंचिज गात आजिज न बात अंचंज गात अनरंज बात अंटुट भंडार अंडट अपार आडीठ धर्म अत टीठ कर्म अनब्रन अनंत दाता महंत हर बोल मना चंद त्व प्रसाद करुणालया है अरकालया है खलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ववारण है त्रित के करण है जग के करण है मनमान्य है जग जान्य है सर्वंग पर है सर्वंकर है सर्वपास्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वंपर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंड से खलखंड से परते पर है करुणा कर है जपा जप है तपा तप है कृता कृत है मृता मृत है अमृतामृत है करुणा कृत है कृता कृत है धरणी त्रित है अमितेश्वर है परमेश्वर है कृता कृत है अमृतामृत है जवा कृत है मृता मृत है निर्णायक है कलकायक है विश्वंपर है कुरुणालय है निरपनायक है सर्पायक है पापंजन है अरगंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है भुजंग प्रयाचंद नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र।

मूरा संग ताम संग शांत रूपे नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रिय नादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो वास आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे कचरी चंद अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपक अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम काम अगाह अटाह अनाथे परमाथे अजूनी अमूनी नरागे नरंगे नरूपे नरेखे अकर्मंग परमंग गंजे अलेखे पुजंग प्रयाचंद नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामंग बेपूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग परनासी सुधर्मंग बेपूते सदा सचदानंद सत्रंग परनासी करिमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजाय बेपूते गजाय गनी में हरियंग करियंग करिमुल रहीम में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सोयाम भव सुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग परनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगंग बेपूते दुकालंग परनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगंग बेपूते वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। इको अंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवीं त्व प्रसाद सवैये श्रावक शुद्ध समूह सिद्धान के देख फिरो कर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुदादिक संत समूह अनेक मति के सारे देश को देख रहे हो मत को न देखे तो प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते करती बिने करती के मातिम तंग जरे जर संग नूपो तंग सुरंग सुवारे कोट तुरंग कुरंग से कूद पान के गौन को जात निवारे भारी भजान के भूप भली बिदन आवत शीस न जात बिचारे ते भये तो कहा भय भूपत अंत को ना गई पाए पधारे जीत फिर सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसुत ही है राज हजारे भूत विवेक भवान के भूपत कौन गने नहीं जात बिचारे सिर्प सिर्प भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे तीर्थ नान दया दम दान सुसंजम नेम अनेक बसेख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सुबान के पिख है पावन आहार जति जत तार सब सुबिचार हजार के दिख है श्री भगवान पजे बिन भूपते करति बिन एक न लिख है शुद्ध सिपाह दुरंत दबाह सुशासना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान परे मन में कर पर्वत पंख हले न हलेंगे तोर अरिन मरूर मवासन मातिम तंगन मान मलेंगे श्री पर श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहां निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार बचार हजार की तार पछैया तोरत देश मलिंद मवासन माति गजान के मान मलैया गाड़े गडान के तोड़न हार सुबात नहीं चकचार लवैया साहिब श्री सबको शरणायक जाचक नेक सुवेक दिवैया दानव देव फनिंदन साचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब ताप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बो पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिर जग सत्र सब अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजिंद्र निराद जौन त्रलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजा दिक दान अनेक स्वंबर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सचिपत अंत फसे जम्फास भरेंगे जे नर श्रीपत के प्रस है भगते नर फेर न दे तरेंगे कहा पयो जो दो लोचन मूंद कर बैठ रहे हो भक्त ध्यान लगायो नाथ फिर सात समुन्द्र लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बखयान सु बैठ कैसे ऐसे सुबैस बितायो साच कहूं सुन ले सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो काहू ले पाहन पूजत रहो सिर काहू ले लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर वाची दिशा में काहू पछा को शीस निवायो को बतान को पूजित है पस को मृतान को पूजन तायो कूर क्रिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो को बतान को पूजित है पस
कोमृतान को पूजन तायु कूर क्रिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायु। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कपियो बाज बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दय रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सब तुम काबू आप हाथ दय मुहे बचाबू सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज कर दय करिय सबैरन कुआ संघरिय पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊ जो बरचाऊ सो तुम ते पाऊ। सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दय मुझे वरी है मरण काल का त्रास निवरी है। हु जो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुझ जू करे हो रच्छा राख लेहो मुहे राखन हारे साहिब सन सहाय प्यारे। दीन बंदुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर दुष्कंता काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमासा जवन काल जोगी शिव की यो वेद राज ब्रह्मा जूथियो। जवन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दै जच्छन उपजायो वाद अंति कै अवतारा। सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तिसी को हमारी सकल प्रजा जिन्हें आप सुवारी शिव कन को सब गुण सुख दियो। सत्रन को पल मुंह बद कियो कट कट के अंतर की जान भले बुरे की पीर पहचान चीटी ते कुंच रस फुल्ला सब पर कृपा दृष्ट कर फुल्ला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पहचाने कट कट के पट पट की जाने जब उद कर करा करतारा। प्रजा तरत तब देह अपारा जब आकर करत हूँ कबू तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ जेते बदन सिर सब तार आप अपनी बूझ उचार। तुम सब हीते रहत निरालम जान तो भेद भेद अरालम निरंकार निर्वकार निर्लंब वाद नील अनाद असंभुता का मूड उचारत भेदा जा को भेव न पावत भेदा। ताका कृपा अनन मानत मा मूड कच भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चिन्हत न पेव आप अपनी बुद है जीती वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती। तुमरा लखा न जाए पिसारा के विसजा प्रथम संसारा एक कै रूप अनूप स्वरूपा रंग पैहु राव कई पूपा। अंड जेर सेत जगीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी कऊ फूल राजा वह बैठा कऊ सिमट पै शंकर कैठा। सिगरी श्रेष्ठ दिखाए चंबवा जुगा स्वरूप सोयम पव अब रक्षा मेरी तुम करो। सिको बार सिख संगरो दुष्ट जिते उठो उत्पाता सकल मलेश करो रन काता। जे अस तुझ तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुख तह वै मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे। जो काल को एक बार ते है ताके काल निकट नह है रच्छा हो ताहे शुभ काला दुष्ट अरिष्ट रह तत्काला। कृपा दृष्टन जाहे निहरे हो ताके ताप तनक मैं हरे हो रिद्ध सिद्ध कर्म सब हुई दुष्ट छाछ व सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें सुभारा काल फास ते तायो बारा जिन नर नाम तिहारो का आधार दुष्ट दुख ते रहा। खड़ग के तुम्हें स्वर्ण तिहारी आप हाथ दै लेहो बारी सर्व ठौर मोह हो सहाई दुष्ट दुख ते लेहो बचाई। कृपा करे हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता किल विक सकल दे को हरता दुष्ट दुख इनको क्षय करता। श्री आशुतोष जप भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन वांछित फल पावे सोई दुख नंत से व्यापत कोई अड़िल। सुने गुंग जो याहे सुरस न पावई सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पौ निकट न तिन नर के रह हो जो या की एक बार। चौपाई को कहे चौपाई संबत सत्रह सहस पनी जय अर्ध सहस तीन कही जय। पाद्रव सुदिष्ट मेर वारा तीर्थ तद्रव ग्रंथ सुधारा सुवैया पाए गए जब ते तुमरे तब ते कुआक तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक न जान्यो। श्री सुपान कृपा तुमरी कर मैं न कहूँ सब तो हे बखान्यो। दोहरा सगल द्वार कहो छाड़ कह गहो तुहारू द्वार बाहे गहे की लाज अस
गोविंद दास तुहार सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज अस गोविंद।

सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया भर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया भर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर।

चलायो। सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो, गुरु ग्रंथ जी मान्यो, प्रगट गुरा की देह जो प्रभु को मिलबो चाहे। खोज शब्द में राज करेगा खालसा, आकी रह ना ख्वार हुए सब मिलेंगे। बचे शरण जो वाहे गुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे

देई से सुतार नैन महिंजे तरस दे कद पसी दीदार दर्शन प्यासी दिन स रात चित भवन दिन नीत खोल कपट गुर मिलिया नानक हर संग मीत धर्मा दे ठाडे दरबार तुझ बिन सुरत करै को मेरी दर्शन दीजै खोल किवाड़ सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाय हुवै सिफत खसम दी नूर अरसह कुरसह चट्टी तुद डिठे सच्चे पात साह मल जन्म जन्म दी कटी सतनाम

रात कारण धन संची है, पलके चलन होए नानक नाल न चलई फिर पछतावा होए। महला दूजा। बद्दा चट्टी जो भरे ना गुण ना उपकार, सेती खुशी सवारी है नानक कारज सार। महला दूजा। मन हठ तरफ न जिपई जे बहुता काले, तरफ जिने सत भाउ दे जन नानक शब्द विचारे। पौड़ी। करते कारण जिन किया सो जाने सोई, आपे सृष्ट उपायन आपे फुन गोई। जुग चारे सब भव थकी किन कीमत होई, सतगुर एक विकालिया मन तन सुख होई। गुरमुख सदा सलाही है करता करे सोई, सतगुर एक विकालिया मन

पौड़ी सेव की थी संतोख हुई जिन्हें सचु सच ते आया उन्हीं मंदे पै न रखियो कर सुकृत धर्म कमाया उन्हीं दुनिया तोड़े बंदना अन्न पानी थोड़ा खाया तू बख्शीसी अगला नित देव है चढ़े सवा

दयाल कृपा करे ता साहिकार कराए सी। सो सेवक सेवा करे जिसना हुक्म मनाए सी। हुक्म मन्ने हो वे प्रवान ता खसमे का महल पाए सी। खसमे पावे सो करे मनो चिंदिया सो फल।

गुर बाणी कहे शिवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। गौड़ी महला पंजवा ऐसो पर चौपायो करी कृपा दयाल बीठ लै सतगुरु मुझे बतायो। रहाओ जात

खंड ब्रह्मांड का एको ठाणा गुर पर्दा खोल दिखायो। नौ निद नाम निदान इकठाई तो बाहर कैठे जायो।

राख पिता प्रभ मेरे, मोहे निर्गुण सब गुण तेरे। रहाओ पंच बिखादी एक गरीबा, राख हो राखन हारे।

तिन ते धीरज पाया, संती मंत दियो मोहे निरभउ, गुर का शब्द कमाया। जीत लए ओए महा बिखादी, सहज सुहेली बाणी, कहो नानक मन भया परगासा, पाया पद निर्वाणी। गौड़ी महला पंजवा। ओहो अविनाशी राया, निर्भउ संग तुम्हारे बसते,

पंथ एक कर पेखिया, सहज सुख सो की ना कीनी भुगता, जो ठाकुर मस्तक लिखिया।

अपने सेवक संग तुम प्रभ राते, ओत पोत भगतन संग जूरी, प्रियो प्रियो नाम तेरा दर्शन चाहे, जैसे दृष्ट उह चंद चकोरी।

हुक्म बूझ सुख पाई रे, जो प्रभ करे सोई भल मानो, सुख दुख ओही त्याई रे, कोट पतित

बख्शीस बजहु मिल एक नाम, सुख सहज आनंद विश्राम, प्रभु के चाकर से भले नानक ते।

0: सन्मानयोग सत्संगी जनों, मैं जिन्हां शब्दों का कीर्तन कर रहा हाँ, यह शब्द आप संगत विचों ही संगत वालों कुछ बच्चों ने मैनू हुक्म किया, मैं इन्हां शब्दों का गायन करके सुनावा जी। सतगुरु बख्शिश करे जो गाविया सुनिया है इसकी विचार साडे हिरदे वस। तो एक शब्द की हाजिरी होर मैं आप जी के नाल मिलकर लगावांगा जी। हम चाकर गोविंद के ठाकुर मेरा पारा, इस शब्द का मैं हुक्म होया सी कि बच्ची वालों। तो पिछले दो दिन तो तीन दिन तो दस रहे आप संगत की सेवा में हाजिर हैं। अज का ही इस फेरी का सतगुरां दे मुबारक दरबार के अंदर आखिरी प्रोग्राम है। जदों जदों भी मालक की बख्शिश हो मैं हाजिर हुंदा हाँ। प्रबंधक वीर का मैं हिरदे दीआं गहराइयां तो धन्नवाद करदा हाँ वीर नरेंद्रपाल सिंह जी ते उहनां दे समूह जिन्ने भी साथी हैं, मेरे अति सत्कारयोग एम जी डॉक्टर पाठिया, कमलजीत कौर पाठिया, जिन्होंने सहयोग नाल आप संगत की सेवा का सपोर्ट प्राप्त हुंदा है। आप जी बहुत प्यार देंदे हो, बहुत माण देंदे हो, मैं तुहाडे प्यार दा सारयां दा माण दा मैं ऋणी हाँ, मैं थोड़ा कर्जदार हाँ। जिमें जिमें समा मिलता रहेगा मैं आप संगत की सेवा च हाजिर होवांगा। तो जिमें कि आप जी ने दस्या है, कल दीआं खबरां विच भी आप जी ने पता लग रहा है कि जो कोरोना वायरस है इसका एक होर रूप बदल के आया है, जिस तों आपां सुचेत रहना है। अपना भी ध्यान रखियो, दूसरों का भी ध्यान रखियो। डरना भी नहीं, पर बेप्रवाह भी नहीं, लापरवाह भी नहीं होना। करते तो भरोसा रखना, वो रखिया करे कारोबार तेरा प्रवासा, तू जन के है संघ। पर सुचेत जरूर रहना है, अपनी सेहतां का ध्यान रखियो, जरूरत अनुसार ही बाहर निकलियो। जब तक घरे रहो, बच्चों के रहो, बच्चों के नाल कोई गुरमत दियां गल्लां करो, कोई गुरु दियां गल्लां करो, कोई चंगियां गल्लां करो, कोई चंगियां बच्चों नूं गल्लां सिखाओ। तो पिछले समय तो सारा संसार संताप भोग रहा है, मालक की कृपा है वो जाने, पर आपां सुचेत रहना है। और जिन्होंने वैक्सीन लवा ली है ठीक है, जो नहीं है तो लवा लो, दवाई असर तो कर दी है। तो मैं तो भाई साहब कल दे लवा के आया, मैं बूस्टर लवाया होया, इन्होंने सैकंड डोज लवाई हुई, बुखार सानू दोनों नूं चढ़िया होया। पर जो मैं अक्सर मैं बेनती करता रहिंदा हाँ, कीर्तन बंदगी है। गुरु नानक साहब ने कोई होर कर्म नहीं किया परमात्मा की बंदगी वास्ते, ना घर छड़ के जंगलों च गए, ना भुखे रहे, किसी तरह का कोई कर्म कांड नहीं किया, सिर्फ तो सिर्फ कीर्तन किया। सो कीर्तन नूं ध्यान रखना, आपां कन रस नहीं बनाउणा, इबादत है, बंदगी का तरीका सानूं सतगुरां ने बख्शिया है। तो जदों बंदगी करदे होईए ते मालक दी मेहरामत हुंदी है, जे वह सतगुरु एकाग्रता बख्श देवे तां ध्यान रखना इस गल दा, उसकी कृपा तो बिना एकाग्रता भी नहीं हुंदी। जे एकाग्रता बन जावे तो फिर दुख सुख भी भुल जांदे आ। तो तुहाडियां संगतां दीआं असीसां दा सदका आप संगत दी सेवा कीती है। एक शब्द का होर गायन करके फिर समाप्ति होगी। अगला जो भी प्रोग्राम है वह आप जी ने प्रबंधक वीर दस देंगे। हम चाकर गोविंद के ठाकुर मेरा पारा, कि बच्चों ने मैंने हुक्म किया सीगा, मैं किसी वड्डे ने कहा हुंदा तो फिर भावा मैं, क्योंकि मैनू कई बार लगता है कि मैं उन्होंने शब्दों का ही कीर्तन कर रहा जिहड़े थोड़े दिन पहला सुनाए से, पहला भी सुनाए। पर कई बार मेरे नाल एक इस तरह की घटना हुई, मैं मिसी सागा टोरंटो कीर्तन कर रहा सी, एक बच्चा बार बार एक शब्द वास्ते कह रहा सीगा, मैं पता नहीं शब्द विसरिया होया सी जां मैं ध्यान नहीं दिता, मैं शब्द का गायन ना किया। तो समाप्ति हो गई, आनंद साहब भी जाप हो गया, अरदास भी हो गई। तो बच्चे ने जड़ा रौला पाया वो रोई जावे सानू पता ना लगे तो क्यों रोंदे सारे देख तो उहदे माता पिता जी आए कहण लगे भाई साहब तुसीं बच्चे साडे ते शब्द नहीं गाया तो इस करके रोंदा है। तो फिर मैं समाप्ति तो बाद फिर कीर्तन शुरू किया। सो न्याणियां तों डर लगता है इहना इह बड़े डाढे हन न्याणे ਵੱਡੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਵਾਂਗੇ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨੇ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੈਂ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ।
1: ਹਮ ਚਾਕਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ

बुद्ध प्रदान करनी, सतगुरु जीओ कृपा करनी, सुभाग जोड़ी दे सिर ते मेर भरिया हथ रखना, ग्रिष्ट धर्म दियां सारियां खुशियां प्रदान करनिया, ग्रिष्ट दियां जिम्मेवारियां निभाउण दा आप जी ने बल उदम बख्शिश करना, गुरमत अनुसार जीवन जिउण दी आप जी ने जाच बख्शिश करनी, गुरसिक्खी वाला जीवन बख्शिश करके नवाजना सतगुरु जीओ, दोहां परिवारां विच आपसी प्रेम प्यार इतफाक दी दात बख्शिश करनी, रहमतां करनिया सतगुरु जीओ, सदा अपने चरण कमलां दी प्रीत और प्रतीत बख्श दे रहना गरीब नवाज, सुभाग जोड़ी वल्लों आप जी नूं खुशियां दे समें सुंदर पोशाके पहनाए गए हन, आप जी ने अंगीकार करने, सदीव काल सेवकां दे पड़दे कजने, बेअंत भंडारियां विचों सतगुरु जीओ कड़ा प्रसाद दियां देगां सज के हाजिर हुईयां हन, दर प्रवान करना प्रवान होया प्रसाद, सत संगत विच वर्तन दी आग्या होवे जी, सतगुरु जीओ बेअंत संगतां ने हाजरियां भरियां, पेटावां माया आप जी के चरणा विच अर्पण कीतियां, सबना दियां हाजरियां पेटावां दर प्रवान करनिया, समूह संगत दियां हाजरियां प्रवान करनिया, समूह संगतां नूं दरों घरों चढ़दियां कला बख्शिश करके नवाजना सतगुरु जीओ, इस वक्त आप जी कृपा करो पावन पवित्र हुक्मनामा साहिब बख्शिश करके दर आई समूह संगत दी गरीब नवाजी करो जी, अखरवाद घाट भुल चुक मुआफ करनी, सरबत दे कारज दा